गुन गावत तेरी उर्त समैल बिन सजाए होमै बिक फैल हूं अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड सियानब सगली मना साध संग पावे सड़ तना हर पूंजी संच करो बेहार इहां सुख दर गए जयकार सार बंदर अंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाव अनंत मन तन जाप एक भगवंत एक एक एक हर आप पूर्ण पूरह प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पय एक अराध प्राठित गए मन तन अंतर एक प्रवराता।

सास सास प्रभु तुम्हें ध्याव। चरण कमल थ्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एको आधार नानक मगे नाम प्रभु सा, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए। हार रस पावे बिरला कोय, जिन चाख्या से जन त्रिवताने। पूर्ण पुरख नहीं डोलान, सो पर भरे प्रेम रस रंग। उपजय चाओ साध कै संग, परे सन आन सब त्याग। अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग, बड़पागी जप्या प्रभ सोए। नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी भई। सतगुर ते निर्मल मत लई, जान को प्रभ होयो दयाल। सेव

एक निमख हर के गुण गाय, अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। भव भोजन कापड़ संगीत, रसना जपती हर हनीत, भले सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, स्वाद संग प्रवति होनेवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक

तब हर्ख सोग कौ किसै व्याप्त, जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोहो कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नानक कर रहा न दूजा, जब होवत ब्रह्म केवल तनी, तब बंद मुकुत कौ किस कौ गनी, जावे कै हर अगम पार, तब नरक स्वर्ग कौ कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहस पाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए।

उरत हारै तौ शगन अपशगन कहा विचारै जय आपन ऊच आपने आपने रा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अपेद समाया ऊहा किसै ब्यावत माया आवस का आपे आदेश ते गुण का नाही परवेश जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता जय आपन आप आपत यारा तह कौन कथ कौन सुनने हार।

आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी ही की नी माया। साव कै मद अलिप तू रह,

सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआव, जन कै संग जित आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

जाए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पे सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न पे गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद या प्रवतारी, नानक ने भी खेप हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बहर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक रिसै प्राप्त हो।

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कावेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन।

हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हफ्तावारी दीवाना विच गुरु साहब के सन्मुख हाजरी भर रहे गुरु रूप साहसिंह जी, आप जी ने बड़े प्यार सत्कार अदब नाल बैठ के महाराज की बाणी श्रवण की है। कोटान कोट शुक्र है धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का, अति धनवाद आप जी प्यार वाली संगत का जिन्होंने बड़े प्यार अदब सत्कार नाल बैठ के सतगुरु की बाणी श्रवण की है। अति धनवाद इतों के वजीर साहबान भाई सुच्चा सिंह जी, रागी सिंह, भाई जसविंदर सिंह, भाई प्रेम सिंह जी, जिन्होंने बहुत प्यार सहयोग बख्शिश किया। कोटान कोट धनवाद समूह मैनेजमेंट कमेटी का, विशेष तौर पर भाई मिंगा सिंह जी, जिन्होंने हुक्म लाया तो दासरिया ने आप जी की सेवा विच कीर्तन रूप में सेवा करन दा मौका बख्शिश किया है। सबना दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद है जी। इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी, आओ सारे रल मिल के पावन बाणी आनंद साहब जी का गायन करिए जी।

बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पाशु दसवें प्रथम भगवत समर कह गुरु नानक लिए त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिट सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दावे ताए। सब थाए हो सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब थाए हो सहाय दसवा पातशाह जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब पाठ दीदार दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देश लाए तेग वाए देख के आन डिठ कितना प्यारा सचियारे दे कमर ते अंतर के। बोलो जे जिन्हां सिंघां सिंघणे धरमे तो सीध ते बंद बंद कटाए खोपरे लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आर नाल चराए गए गुरद्वारे सेवाली कुरबानी कीते धर्म निहारा सिखी के सा स्वस्था नाल लवाए तिन्हां दे कमर ते अंतर के। बोलो जे पंचां तख्तां सरबत गुरद्वारियां ध्यान तर के। बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चित आ विच तावन सदगा सर्व सुख होवे जां जां खालसा जी साहिब तहां तां रचिया रियायत देग दिग फते विरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दन सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दशी स्नान चौंक जड्डे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मादा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ से सदा साहिद तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामा जिन्हें तो पंथ नूं विछोड़ गया खुले दर्शन दार ते सेवा संभाल दान खालसे नूं बख्शो। हे निमाणित मान निताणिया तान न्यूटियां तोड़ सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर। तू समरथ अकथ गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानकी अरदास दे माँ वाक अनुसार सतगुरु जियो। आज दर कर दे प्रीतवान सरदार चरणजीत सिंह बीबी परमजीत कौर तिना दे सुपुत्र सरदार रजिंदर सिंह बीबी सिमरनजीत कौर वलों सतगुरु जी आप जी बख्शिश दातों तों शुकराना करदिया होया ते आप जी ने कृपा की पुत्री दात बख्शिश की है। सतगुरु जी समूह परिवार ने आप चरण कमलों का ओट आसरा लिया है। सतगुरु जीओ आप जी बख्शिश सदका ऐतवार के विशेष दीवान साहब सन सजे हुए दीवाना दंदर श्री सुखमन साहब जाप किए गए हैं। इलाही कीर्तन है कथा विचार हुई हैं आनंद साहब छे पौड़े जाप किए गए हैं। बाणी पढ़द्या कोलों सेवा करद्या कोलों कथा विचार करद्या कोलों एक ने अनेक ही प्रकार के गलतें भुलों चुकों दिखे बख्शिश करनी अगत कृपा करनी शुद्ध बाणी पढ़न कीर्तन करने समर्था बख्शिश करनी सतगुरु जी आप कृपा करनी समूह परिवार में आपसी मेल प्यार इतफाक बख्शिश करना बच्चों ने माता पिता दे आज्ञाकार उच्च विदात नेक जीवन जीवन कामयाबी समर्था बख्शिश करनी सतगुरु जो जिस मनोकामना लैके समूह परिवार ने आप जी चरण कमलों का ओट आस रह लिया परिवार के शुभ शुभ मनोकामनावान गुरमत मर्यादा अनुसार संपूर्ण करनिया कार विच दुखों के नाश करने सुखों के प्रकाश करने किरत कमाइया में बरकता पानी सतगुरु जी संगतों की हाजरी तिल फुल भेट हाजरी अपने दत्ते प्रवान करनी जी समूह संगत अपने तरो करो नाम और गुरसिखी दत्तों बख्शिश करनिया सतगुरु जी समूह परिवार वालों आप जी सुंदर माला साहब अर्पण किए गए हैं। आप अंगीकार कर रहे हो सतगुरु जी परिवार के लोग परलोक पढ़ते गजने सतगुरु जी इस वक्त आप जी के हजूर पंचम कड़ा प्रसाद दी सर की हाजरा दर प्रवान हुए प्रसाद समूह संगत में वरताउण दी आग्या बख्शिश कृपा करो सतगुरु जी कृपा करो अपनी पवित्र बाणी विच हुकम साहब बख्शिश करने अखरवादा घाटा पुल चुक माफ करनी श्रद्ध काज रास करने सही पैर मेल जिन्हें मिले तो नाम टावे नानक नाम चढ़दे कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल तै लोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैद रखो अरदास जियो पैद रखो हर जन केरी हर दियो नाम नरंजनो अंत चलदियां होए बेली जमदूत काल ने खंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह शाबाश जियो मेरे सिख सुनो पुत भाइयो मेरे मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करै शाबाश जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरदास जियो तुर लिखिया परवाना फिरा नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाण अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया मित पैजा मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख हुंदे बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िया हर नाम सुनिया बेबान हर हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोरी पुत सन मुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कार बखीली निवै नाई फिर सतगुरु आ नवाया हर गुरे पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो हर गुरे पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का

तुम मात पिता हम बारक तेरे में कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा

अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वासुभ खंड ब्रह्मंडा है। हाम गरीब मसकीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम दार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है।

सतगुर खे माताणिया जुग जूत समाणे अनपो ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे ए राज जोग गुरु रामदास तुम हू रस जाने गुरु नानक अंगद अमर भगत

गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो के जो समुची मानवता नूं पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है ये पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज गरीब नवाज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन रसना तो उच्चारण होया सोरठ राग का शब्द है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पित्र अंग 624 उत्ते सुभायमान है। वाहिगुरु कृपा करन अपने दसे हुए आसे मुताबक सानू जीवन ढालन की दात बख्शिश करन पातशाह जी का जिन्ना भी शुकराना कर लिया जाए वह थोड़ा है जिन्ना भी धन्यवाद कर लिया जाए वह थोड़ा है वो साडे ते कृपा करते ने नदरे रहमत बख्शते ने अपने चरणों से सानू सारिया नू हाजरी भरन का वक्त सतगुरु देंदे ने। सो तुसी बड़े प्यार नाल अमृत वेले की सवाल करदे होया स्वासां रूपी पूंजी नू सफला बनाउण वास्ते गरीब नवाज गुरु अर्जन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण परसन दे लई गुरु घर विच आउंदे हो सतगुरु कदम लेखे विच लाउण परिवारां विच सुख शांति सेवा सिमरन सिखी सिदक भरोसा नाम दीआं दातां बख्शिश करन गुरु घर विच हाजरी भरन वास्ते हाजर होई गुरु की संगत का समूह टहलीए सेवादारां वल्लों दोवें हथ जोड़ के धन्नवाद जीओ आया जीओ आया जीओ आया भुल चुक दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहु गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहु गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहु गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहु गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहु गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

0: सगल पावन की सोध
1: मो चोटा न खाए मन जम के साथ न जाए
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाना मन कोए
1: मन मार्ग थाक न पाए मन पछो पर गचाए
0: मन्ना मागन चला पंथ मन्ना धर्म सिद्ध।

परवंगी परमाथे समस्ति प्रभुते नमो राजर्गेश्वरं परम रूपे नमो राजर्गेश्वरं परम वृद्धे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता नमो जोग जगेश्वरं परम युक्ते नमो प्रेत प्रेत देवेषु धर्मे नमो छा छा नमो पुह पुपे नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं अनुपे अरूपे समस्तु निवासी अदो ऊर्ध अर्दं अंग अंग हर्ता सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं समस्तो पराधि समस्तस्ततामं प्रभु है अजू है आदेश है अपेश है नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो छा छाहे नमो माह माहे नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे

0: चतर चक्कर दाने, चतर चक्कर जाने, चतर चक्कर पाले, चतर चक्कर काले, चतर चक्कर मानिए, चतर चक्कर दानिए, ना कर्मन ना काये, अजन्म ना जाए, प्रतीचिये अदिशिये अदृश्य अकृश्य,
1: भगवती शांत प्रसाद कथते की आछे जिदे से के आपिज पे से
0: के आकंज करमे के आपंज पर में
1: के आपिज लोके के आदित सोके
0: के अतूत बरने के प्रभुत करने
1: के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा है
0: के अशोक बरने के सर्वा परने
1: जगदंकृति है के छत्रं छत्री है
0: के ब्रह्म स्वरूपे के

0: के सर्वं कली है, के सर्वं दली है,
1: सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र दान्य,
0: के सर्वत्र गौणे, के सर्वत्र पौणे,
1: सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे,
0: के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र साजे,
1: सर्वत्र दीने, के सर्वत्र लीने,
0: के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो,
1: के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पेशे,
0: के सर्वत्र काले, के सर्वत्र पाले,
1: के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता,
0: के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी,
1: के सर्वत्र काजा, के सर्वत्र रागे,
0: के सर्वत्र सुख, के सर्वत्र भूख,
1: के सर्वत्र त्राणे, के सर्वत्र प्राण,
0: के सर्वत्र देश, के सर्वत्र पेश,
1: के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान,
0: के सर्वत्र जापे, के सर्वत्र थापे,
1: के सर्वत्र पाने, के सर्वत्र माने,
0: के सर्वत्र इंद्रे, के सर्वत्र चंद्रे,
1: के सर्वम कली में, के परमम फहीम,
0: के आकल आला में, के साहिब कला में,
1: नल वजू है तमाम रजू है,
0: हमें सुलसला में, सलीख दुमदा में,
1: शिकस्ते गरीब उल परस,
0: बल इंदुल मकाने, जमीन उल जमाने,
1: जुल दमा में रजू अल निदान,
0: हरी फुल अजी में रजाइक यकीने,
1: कुल तरंग है, अपेद है, अपंग है,
0: अजी जो निवाज है, गरीब मुल्क राज है,
1: स्वरूप है, त्रिमुक्त विपूत है,
0: प्रभुक्त प्रभा है, संयुक्त सुधा है,
1: सदैवंग स्वरूप है, अपेदी अनूप है,
0: समस्त उपराज है, सदा सर्व साज है,
1: समस्त उल सलाम है, सदैव लकाम है,
0: निर्वाद स्वरूप है, गाज है, अनूप है,
1: अंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है,
0: अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिका में,
1: वर्गं त्रिपादे, अगंजे अगादे,
0: सुमह सर्पागे, सुसर्पा अनुरागे,
1: मुक्त स्वरूप है, अछिज है, अछूत
0: है, नरकं प्रनाश है, प्रफुल्ल प्रवास है,
1: प्रभा है, सदैव सदा है,
0: प्रभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,
1: विरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है,
0: अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त

0: सर्वं क्षन्ता प्रसाद
1: सर्वं
0: ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
0: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: प्रसाद नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे
0: अनंगं स्वरूपे अपंगं प्रभुते।

0: जति के
1: सुरस राजन शुद्ध सदादर संसमूह अनेक मति के
0: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राणपति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा उनके एक रति बिन एक रति के
0: तंग
1: कुरंग से कुंदल पौन के गौन को जात निवारे
0: जात
1: विचारे तो कहा पूपति अंत को ना गही पाई पधारे
0: को बाजे ढोल में
1: दंग नगारे के सुंदर ही सती है राज हजारे
0: के
1: भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे श्री पश्री भगवान पे अंत को अंत के ताम सिदारे वेद पुराण कते कुरान जमीन जमान समान के पेखा श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: श्री
1: पा श्री भगवान कृपा में त्याग जहाँ निदान चलेंगे
0: बार बड़े
1: बड़े आर बेचारे सार की तार बजैया तोर देश मलंद मोहसन माते के मान मलैया साहब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दुवैया जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: बाढ़
1: जय तुन
0: पापन के वो
1: पुंज खपेंगे सतर सवे लोग चपेंगे
0: को राज करेंगे
1: स्नान गजा के दान एक स्वयंवर साज भरेंगे
0: ये न
1: श्री पद के प्रसय पग ते न फेर न दे करेंगे
0: बैठ
1: रहे हो भक्तियां लगायो ना फिर सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: बैठ के ऐसे ऐसे
1: बतायो सात को सुन लो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो
0: काहुल लिंग करे लटकायो
1: काहु लिखो अरवाची दिशा में काहु

0: क्या करे बेचारिया,
1: तो बाद सम्राट कोए ना ही कृपा कर बनवारिया,
0: एस नो होर था उनाए सबद लाख सवारिया,
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया,
0: अनंत अनंत सबको कहे अनंत गुरु ते जानिया,
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया,
0: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया,
1: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सबल सत्य।

0: सब जानी हर नाम हरस को गो
1: है नानक प्रभाव मिलिया कर्ण कर्ण जो गो
0: हे श्री राम मेरे इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया
1: जग में आया
0: तेरा वचन चो सुवर्ण मन सोया

तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मैसु कोई न जान तुम्हारा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुम्हारा सूतर तारी तुम ते तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्तर कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देख देख हते बिरद की पैद पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पित्र दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मानीवा मत उची मत पदा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी हे नमाणियां दे मान सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी दे पावन पित्र चरणा करदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना कीती जांदी है पातशाह आप जी ने महान कृपा कीती पातशाह अमृत वेले आप दी पित्र हजूरी अंदर सुंदर दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच संगतां वल्लों संगती रूप अंदर पंज बाणियां दे नितनेम होए नौवें पातशाह जी दे सलोक पढ़े गए होर बहुत सारी बाणी पढ़ी गई सच्चे पातशाह बाणी पढ़दिआं कई गलतियां हो जांदियां ने अणजाण बच्चे समझ के माफ़ कर देना अगांह वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़ी सुनी बाणी का भाव दाराइयां संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा अपने चरणी लाउणा गरीब नवाज सतगुरु अमृत वेले आप जी दे दर्शन करन वास्ते बेअंत संगत हाजरी भर रही है कदम लेखे च लाउणे सेवावां पिटावां रस्तां अपने चरणां च दर प्रवान करनियां दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके करतार्थ करना जगत जलंधा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारा उभरै तत्ता लिहो उबार सतगुरु संसार विच सुख शांति चढ़दी कला प्यार मुहब्बत दी सांझ गरीब नवाज पातशाह बना के रखनी सतगुरु जी आप जी दे पित्तर चरणां च बेनती है गुरु दीआं संगतां वल्लों बड़े प्रेम सत्कार नाल सहज पाठ किए जा रहे ने पातशाह बाणी पढ़द्या पढ़द्या मध तक बाणी पढ़ी गई पातशाह आप जी की आगाध बोध बाणी पढ़द्या गुरु के सिखा को उठद्या बहिंद्या सेवा करद्या कई सूखम गलतियां हो जांदियां ने खिमा करना
ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।